ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: The Asian community, 24 hours a day. This is Sunrise Radio, Yorkshire.
1: From the Sky News Centre at 6, Sir Keir Starmer's right-hand man Darren Jones has shut down any speculation he'll challenge Andy Burnham for the Labour leadership. He's confirmed he won't be standing in the race.
2: Andy Burnham is going to be the next Prime Minister, and if there was a contest of Labour Party members, he would win. So the question for me is, what would the benefit be to the country and to the party of a leadership contest?
1: He insists a reassuring conversation with the newly elected Makerfield MP swayed his decision. Mr Burnham's the only known candidate so far. Hundreds of schools will either close early or not open at all ahead of a red warning for extreme heat taking effect for only the second ever time. Almost all of Wales and huge areas of England already fall under an amber alert. Temperatures could near 40 degrees Celsius, which would comfortably pass June's record of 35.6 set in 1976. Liz Bentley is head of the Royal Meteorological Society.
3: As we go into future decades, as our climate continues to warm, what we feel is actually extreme now is going to be seen as quite cool summers. You know, the temperatures that we're having at the moment will be actually seen as quite cool.
1: The largest maternity investigation in NHS history is expected to reveal later widespread failings in the avoidable harm and deaths of babies. More than 2,500 cases have been reviewed at Nottingham University hospitals. To sport, and England's World Cup tie against Ghana ended goalless last night, though they're still all but guaranteed to progress to the last 32. In the same group, Croatia beat Panama 1-0. Elsewhere, Colombia got past the Democratic Republic of Congo 1-0. Portugal thrashed Uzbekistan 5-0. And tonight, Scotland hope to book their place when they face Brazil in Miami. Meanwhile, Gianni Infantino insists FIFA doesn't make $1 more in revenue from hydration breaks. The organisation's president admits broadcasters may be cashing in from ads, though. And there may be an extra perk to doing the office coffee run. A study's found walking for 5 minutes every hour is enough to offset the health harms from sitting down. That's the latest. I'm Chris Milligan.
4: इस कैसेट टेप द्वारा हम दिवाली के अवसर पर होने वाला श्री लक्ष्मी पूजन संपूर्ण विधि विधान द्वारा करने जा रहे हैं। आइए आप भी अपने परिवार कुटुंब समेत इस लक्ष्मी पूजन में सम्मिलित हो जाइए। इस कैसेट टेप के दोनों ओर प्रोग्राम में जो कुछ शामिल है इस प्रकार है। पूजन में काम आने वाली सामग्री और पूजन का विधि विधान, संकल्प, कलश स्थापना, गणपति पूजन, नवग्रह पूजन, खोड़श मात्री तथा लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा और अंत में श्री लक्ष्मी जी की आरती का गायन किया गया है। सबसे पहले आप पूजन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। दो बड़े थाल, एक मिट्टी का घड़ा या बड़ी पीतल की अथवा तांबे की गड़बी, एक दरमियानी गड़बी, दोनों को या मिट्टी के घड़े को एक बार धो के शुद्ध जल से भर लें। एक थाल में रोला, चावल, फूल, मौली, केसर, पान पत्ते, मिश्री, मिठाई, लौंग, इलायची, धूप दीप आदि रखें। दूसरे थाल के मध्य में गणेश बनावें। बाईं ओर ओंकार, दाहिनी ओर श्री तथा ऊपर की ओर नवग्रह के लिए 9 बिंदु तिलक तथा नीचे की ओर खोर्श मात्री के लिए 16 बिंदु तिलक पंक्तिबद्ध लगावें। हरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट रखें। एक छोटी टोकरी फलों की तथा ऋतु अनुसार फूल और फूल माला तथा मिठाई का डिब्बा भी पास रखें। यदि आप पूजन अपने कारोबार, व्यापार, दुकान या दफ्तर के लिए कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपनी डे बुक, कैश बुक, लेजर तथा कलमदान और गल्ला या सेफ आदि भी साफ सुथरा करके पूजा के योग्य बना लेवें। अब सारा परिवार नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर घर के एक कोने में जहां पूजन करना हो विछाई करके बैठ जाने, एक सिंहासन बनाकर उस पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर जो भी मिल सके विराजमान करें। पूजन के समय चांदी का एक रुपया नवग्रह वाले थाल में रखें, क्योंकि रुपया और पैसा ही लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, तथा कुछ रुपए और खुले हुए पैसे भी अपने पास रखें। बाजार से लाई गई हथड़ी में फुल्लियां, अखरोट, मिठाई आदि भरकर सामने रखें। हाथ में चावल लेकर देवी देवताओं का ध्यान कर उनके सम्मान सत्कार में श्रद्धायुक्त ध्यान लगावें, तथा हो सके तो बोलें, ओम श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, पृथ्व्यै नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। अपने हाथ के चावल पूजा मंडप के ऊपर छिड़क देवें। अब शुद्ध जल दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर उसका आचमन करें, और आचमन पानी के तीन हिस्से बनाकर करना चाहिए। ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। अब शुद्ध जल से हाथ को धो लें, फिर संकल्प के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर चावल, फूल पत्तियां, जल और दक्षिणा के पैसे लेकर बायां हाथ सीधा दाएं हाथ की हथेली पर रखें और संकल्प करें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु हरिओम तत्सद्य श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त एक देशांतर्गते अमुक देशे भारत देशे अमुक पुण्य क्षेत्रे पंजाब क्षेत्रे अमुक ग्रामे अपने नगर का नाम लीजिए। बौधा अवतारे अमुक संवत्सरे 2044 संवत्सरे अमुक मासे कार्तिक मासे शुभ तिथौ चतुर्दशम्याम अमुक वासरे गुरुवासरे अमुक गोत्र प्रवर विशिष्टो अमुक नामाहम। अब अपने अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कीजिए। मम कायक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार्यर्थे स्थिर लक्ष्मी प्रीत्यर्थे श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे सर्वार निवृत्ति पूर्वक सर्वाभीष्ट फल प्राप्त्यर्थे व्यापारे लाभ्यर्थे गणपति नवग्रह कलशादि पूजन पूर्वकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती लेखनी कुबेरादि नाम च पूजनम कृष्ये। अब अपने हाथ की सामग्री भूमि पर छोड़ दें। अब आप अपना सारा ध्यान नवग्रह पूजन के लिए बनाए गए थाल के ऊपर लगावें। थाल के बीच में स्वस्ति चिन्ह बनाया गया है, उसके ठीक बीच में थोड़े से चावल और फूल पत्तियां बिछाकर एक काठी सुपारी के ऊपर मौली लपेटकर उसको गणेश जी का प्रतीक बनाकर गणेश जी स्थापित करें, तथा अब सब लोग अपने बाएं हाथ की हथेली पर चावल ले में कुछ फूल मिलाकर और दाहिने हाथ से ढककर अपनी आंखें बंद करके ध्यान मगन होकर स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करें। ओम श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। हरि ओम स्वस्ति ना इंद्रो वृद्श्रवा स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षेयो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोर्धा।

ओम गणानांत्वा गणपति घ्वं हवामहे प्रियाणांत्वा प्रियपति घ्वं हवामहे।

चक्षु भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे क्षणु यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भो गणपति देव इहाति सुप्रतिष्ठो वरदो मम पूजाम ग्रहान। अब सब लोग अपने हाथ की सामग्री थाली के मध्य में विराजमान गणपति गणेश के ऊपर विसर्जन कर देवे तथा पूजा के सामान की प्रत्येक वस्तु को हाथ लगाकर ऐसी प्रार्थना करें। भो गणपति देव इहा गच्छ इहि तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो मम पूजाम ग्रहान। अहम त्वं पूजनार्थे आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घम आचमनम स्नानम वस्त्रम उपवस्त्रम मधुपर्कम आभूषणम रक्तचंदनम कुंकुम अक्षत पुष्प पुष्पमाला तथा शुद्ध दुर्वा सुगंध तैल तथा च

कलश स्थापन के लिए जो भी आपने चुना हो, मिट्टी का घड़ा अथवा पीतल या तांबे की गड़वी, उसमें शुद्ध जल भरकर और दोनों हाथों से उठाकर पहले उसका भूमि स्पर्श इस मंत्र से करें। ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनाय धरत्री पृथ्वीम यच्छ पृथ्वीम द्रि इहि पृथ्वीम मा हि असि हि। अब कलश स्थापना के लिए अति उत्तम रहेगा यदि आपने दशहरे के मौके पर अपने घर में धान की खेती बीजी हो, उस पात्र को उठाकर सामने रखें तथा कलश धान की खेती के ऊपर स्थापित करें। सप्तधान्य पर कलश स्थापन करने से पहले यह मंत्र बोलें। ओम आजिग्र कलशम महया त्वा विशंति विंदवः पुनरुज्जानि वर्तस सानः सहस्रं धुक्षवोरुधारा पयस्वती पुनरम्मा विशताद्रयैः। अब कलश के जल में शुद्ध जल की धारा दोनों हाथों से छोड़ते हुए यह मंत्र बोलें। ओम वर्णस्य उत्तमनमसि वर्णस्य सकंभ सर्जनीस्थो वर्णस्य ऋच्छदन्यसि वर्णस्य ऋच्छदनमसि वर्णस्य ऋच्छदनमासीत्। ओम कलश कुंभाय नमो नमः। तथा अब कलश के जल में कुशा या

ने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। कपि से उऋण हम नाहीं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाहीं।

0: इन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਬੇਚਣਾ ਹੈ।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303। Sunrise and music.
4: Looking ahead to the weekend, here's what's happening. First, in Bradford, comedian, writer and broadcaster Ruby Wax brings her absolutely famous show to St George's Hall on Friday the 26th of June. Also in Bradford, Luther Live and Velvet Voices comes to St George's Hall on Saturday the 27th of June, celebrating the music of Luther Vandross and classic soul favourites. Over in Calderdale, Dick and Liddy's Comedy Club returns to the Victoria Theatre in Halifax on Friday the 26th of June, featuring Ben Silver, Mickey P. Kerr and Mark Olver. And still in Halifax, Studio 59 presents Brute Takes to the Stage at the Victoria Theatre

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परे थम जवान पीछे से गाना

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दस ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Looking ahead to the weekend, here's what's happening. First, in Bradford, comedian, writer and broadcaster Ruby Wax brings her absolutely famous show to St George's Hall on Friday the 26th of June. Also in Bradford, Luther Live and Velvet Voices comes to St George's Hall on Saturday the 27th of June, celebrating the music of Luther Vandross and classic soul favourites. Over in Calderdale, Dick and Liddy's Comedy Club returns to the Victoria Theatre in Halifax on Friday the 26th of June, featuring Ben Silver, Mickey P. Kerr and Mark Olver. And still in Halifax, Studio 59 presents Brute Takes to the Stage at the Victoria Theatre on Sunday the 28th of June.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

सुनो सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, मगर कौन सी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी, प्रेम कहानी। ओ लड़की दीवानी, सुनो एक कहानी। जवां है नजारे, हंसी है सितारे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8

0: आज बहुत काम
1: है। तो सुनो,
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंड
1: जाए।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: okay,
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: okay, that's it.

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303

0: कफ्सिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कान सलाने ना।

0: एक पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
0: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रेफर 9 टेलीफोन 01274488935

0: मैंने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था। इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5। टेलीफोन 01274464446।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed. Indeed.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूं शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूं ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और खुशियाँ समेटते रहे। आमीन।

पसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाज़ों पर मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह इंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

बाहर का मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं। ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरदेव के इलाके में और इर्द गिर्द के इलाके में, और आप के जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें जब चाहें जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: जुतियां कमी पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।

हों, लेकिन बास दफे हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाजें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज में आपको गीत सुनाए जाएं। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को इंजॉय कर सकें आपके साथ साथ।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: अमा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर
1: टाइट वेरी टाइट।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Sunrise and music.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

हाँ जी, आप सुन रहे हैं गीतों भरा प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे, और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। कुल्लो नफ्सेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

तीसरे और आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी आया ने खुश आमदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303 जीरो।

मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

आज का साथ और आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: 24 hours a day. Sunrise Radio.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first...

0: station, radio station in the world. Sunrise Radio. बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

बारे काफी सोचता था। मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: लिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Are you listening to Sunrise Radio and the platform is 100.6 FM 103.2 FM across the West Yorkshire DAB Plus Bradford Keighley Ilkley Skipton Leeds Halifax Manchester East Lancashire और Blackburn Burley Darwin Nelson Accrington में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा and don't forget in Minton Keynes me and very very soon we will be launching on Derby and you can also download the Sunrise app on Apple Play Store and Google Play Store and not forgetting on www.sunriseradio.fm www.sunrise.radio and that is all about the Sunrise Radio and today is a very very very very special program which I'm doing today and like I did on last Sunday and today is 24th of June 2026 एक महरम का एक खसूसन प्रोग्राम आपके लिए नशर किया जा रहा है और आप सब दोस्तों के लिए जो भी मेरे बहन भाई हैं साथी हैं दोस्त अहबाब हैं और हम भी इस दुख में शामिल हैं और इसमें हमारा भी हक बनता है कि इसमें कदम उठाया जाए और हमारा भी है और हम शुक्र अदा करते हैं हमारी टीम का जिन्होंने हमें मौका दिया है और ये जो है ना एक हम चाहने वाले हैं और मोहब्बत करते हैं और पैंतम पाक का और हमेशा ही मैं कहता हूँ और आज भी कहता हूँ और कल भी कहूँगा और अली अली वाले हैं और उनका जो गम है हम ही यहाँ पे नशर करने जा रहे हैं और उनका गम हमारा गम क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं और ये नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिन्होंने उन्होंने दीन को बचाया उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हमारा भी हक बनता है इसमें जो खुद देखो कि दुख में हम ही इसका डालें और वो ही मोमिन हो सकता है जिसमें दर्द हो दुख हो और वही मोमिन है और उन्होंने देखो हमारे इमाम हुसैन ने हमारे हज़रत अली ने और इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और पूरे ख़ानदान ने कुर्बानी दी हैं पैंत पाक ने कुर्बानी दी हैं किस लिए कुर्बानी दी हैं हमारे लिए कुर्बानी दी हैं मुस्लिम उम्मा के लिए दिए हैं मुसलमानों के लिए दिए हैं और ये वो बात हो रही है और कलमे के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह इन्होंने नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक और सच पे चले उन दीन को बचाने के लिए ये किया है और बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और जवाबदेही कर रहे हैं और हम भी इस दुख में शामिल हैं और बड़े इत्राम के साथ बड़े अदब अदाब के साथ हम ये प्रोग्राम करेंगे और ये जो आठवां दिन है आज मुहर्रम का और इसमें बहुत कुछ हुआ बहुत ही कुछ हुआ है और मैं यहाँ पे कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए बयान करूँ और यहाँ पे हमने एक खूबसूरत कलाम पेश करना है क्यों जब करबला का वाकया होता है तो वैसे भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और दर्द जो ना वो क्या कहें कि दिल में वो दर्द है वो आँख ही किया जिसमें दर्द ना हो वो दिल ही किया जिसमें दर्द ना हो और वो ही दिल जो है और यहाँ पे पकार पकार कर कह रहा है या अली मदद या अली मदद या अली मदद और पीर मौला अली मदद कहते हैं और शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ भी हमने ये पेश करना है कलाम आप दोस्तों के लिए और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो दिन है बड़े ही इत्तराम के दिन हैं बड़े ही अदब अदाब के दिन हैं और सबको बताएं कि ये करबला क्या है ये क्या हुआ है इसमें भी आप बताएं बच्चों को तबीयतें बच्चों को बताएं उनको महफिल के लेके जाएं मजलिस में लेके जाएं मजलिस में लेके जाएं और उनको बताना भी चाहिए उनको पता होना चाहिए कि किसने हमारा दीन बचाया किसकी वजह से दीन बचाया और उनकी वजह से दीन बचाया किन की वजह से दीन बचाया और उनके बारे में बात होनी चाहिए और ज़रूरी होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है आप सब के लिए और पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए और यहाँ पर हमने यहाँ पर कलाम पेश करना है आप दोस्तों के लिए और काफ़ी लाइनें चमक रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आज मैं वापस केम फ्रॉम बर्मिंघम क्योंकि ये खसूसी प्रोग्राम करने के लिए मैं आप दोस्तों के लिए प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ और ये खास खास जो प्रोग्राम है ये जो मुहर्रम का प्रोग्राम है और अल्लाह ताला इसको भी कबूल मंजूर फरमाए आमीन आमीन सुम आमीन जो भी हमारी छोटी सी कोशिश ये करने की जा रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ ममनून हूँ हमारे मैनेजमेंट का पूरी मैनेजमेंट का जिन्होंने हमें मौका दिया है बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर उनका भी और सब का भी हम दुआगो हैं सब के लिए
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now 01274 491 442.

इब्राहिम बहुत शुक्रिया सब दोस्तों जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और हमारी माँ जी हैं, आपने हमारे लिए दुआएं की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, और आप इस दुख में शामिल हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो दुख है और कैसे बयान किया जाए यहाँ पे, बिलीव करें कि इतना क्या कहेंगे और यहाँ पे। और बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने हमें दुआएं की हैं, वाजिब भाई आपने हमें दुआएं की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके लिए भी दुआगो हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सोनिया जी हैं ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम, मेरी बहुत ही प्यारी बहना हैं जिन्होंने हमें याद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देन वी आर लवली कॉल फ्रॉम हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं पाकिस्तान से, हमें याद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह जी हैं हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर मलिक साहब हैं, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, ममनून जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और आज जो काम आपने किया है, और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ माशाल्लाह, पूरे माह जो मुहर्रम का है और जो यहाँ पे पूरे मुहर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने जो काम किया, वैसे आप करते रहते हैं, माह रमज़ान भी करते हैं, और जो मुहर्रम ने स्पेशली आपने किया है, और उसके लिए मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका कि जो आपने इतनी सबीलें लगाई हुई माशाल्लाह, वहाँ पर आप अपना खूबसूरत अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से पूरे मैनचेस्टर में माशाल्लाह, वहाँ पे माशाल्लाह दोस्त अहबाब अजीज़ जो ना माशाल्लाह वो बांट रहे हैं, कुछ नियाज बांट रहा है, कुछ शन्नी बांट रहा है, कुछ माशाल्लाह दूध दे रहा है माशाल्लाह आगे पीछे, और वो जो शरबत है वो सबीलें लगती हैं, और अपनी अपनी जो वो अपनी अपनी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाए माशाल्लाह। और ये भी एक माशाल्लाह एक सवाब का काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है, और यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म में देखा माशाल्लाह, बर्मिंघम में देख रहा हूँ माशाल्लाह, काफ़ी जगह पे सबीलें लगी हुई हैं, मजलिस में जा रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं माशाल्लाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अतीका साहब हैं जिन्होंने हमें याद करें ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से, आपने हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमने क्या करना है कि यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फ़ौरन बाद यहाँ पर हमने एक और कलाम सुनाना है आपके लिए, और पेश करूँगा माशाल्लाह हमारे नात खान जो माशाल्लाह इंटरनेशनल नात खान हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह, वो जल्द वो माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, अपना ख़िताब करेंगे माशाल्लाह, और जो बाकी के दोस्त अहबाब अज़ीज़ हैं वो अपना अपना ख़िताब करेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं होगा यहाँ पे मैं कहूँगा, क्योंकि वो अपना अपना ख़िताब करेंगे, सब अपनी अपनी जगह पर वो आएँगे, तो वहाँ पर अपना एक खूबसूरत अंदाज़ है उनका, प्यारा अंदाज़ है, और उसके हवाले से और महरम के हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा वो उनसे आप सुनेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, जो सुनने वाले भी वो उनको भी अच्छा लगेगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ ममनून हूँ आप सबका जो इस देखो ये जो वाकया हो रहा है अब, और इसमें आपने जो ना जो एक दुख है, ये बिलीव करें कि दुख है और ये शौक है, और शौक मना रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर, और सब जो का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारे लिए दुआएँ की हैं, हमने छोटा सा काम किया है, और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि शुक्र अदा करता हूँ कि मैं संडे रेडियो का और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि देखो कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं और मुहर्रम के प्रोग्राम हो रहे हैं, और आपने सब ने अप्रिशिएट किया और शुक्रिया अदा किया।

0: दिन फरदन, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप आएंगे और उनका भी शुक्र अदा करना है हवा के दोष में भी, क्योंकि संडे रेडियो ने बड़ा ही कमाल का काम किया इस साल, और हमेशा ही करते हैं और आज इस साल भी किया है, और जो हम महरम का प्रोग्राम किया आप दोस्तों के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर आपका भी। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड विद संडे रेडियो 103.2 FM।
1: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है, सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
5: तेरी गलियां
3: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है, सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
1: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

सदके सानू तू बख्शना है उस नूरे कदीमी दा वास्ता ही दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे मुस्तफा दी यकीनी दा वास्ता ही जिस्तिया अखियां चो ओदी याद अंदर वगदा दिने राती नीर होवे ओनू किधरे गरीब ना आख बैना ओदे जेठ ना कोई अमीर होवे ओदे दर्दे गदावां दी की दसां करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे ओनी मंगदा तख्त ते ताज बरी जो मुहम्मद

0: बताएं तो यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे टाइम हो चुका है 44 मिनट पास्ट 8 इन यूके में, ब्रैडफोर्ड में. और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद एक खूबसूरत कलाम होगा आप सब दोस्तों के लिए होगा. शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने भी हमें याद कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए दुआएँ की हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह खैर आपका भी. सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारा साथ दे रहे हैं. अली भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने याद किया है. और रश्मि जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. बोल्डन मोर से अपने हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. पूरी फैमिली यह प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बहुत खूबसूरत कलाम आने वाला है. और शाह जी यह खास प्रोग्राम जो प्रोग्राम किया कि ये जो पूरा जो प्रोग्राम है आपके लिए पेश करूँगा और ये जो खूबसूरत कलाम है ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए होगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आप ड्राइव कर रहे हैं और उस महफ़िल में जा रहे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत महफ़िल हो रही है माशाल्लाह. और हमारा भी सलाम वहाँ पे पेश करना है, आपने भी हमारे लिए भी दुआएं करनी है, ठीक है ना. और जब वहाँ पे जाएंगे माशाल्लाह मेरा सलाम पेश करना है, ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर आपका भी. और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे और जो अभी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और एक यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपको पता है कि एक ज़रूरी है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है. आई यू स्ट्रीमिंग ऑन टिकटॉक लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सनराइज क्रिएटिव नेटवर्क यूके टिकटॉक लाइव एजेंसी हेल्पिंग द क्रिएटिव ग्रो द ऑडियंस development the brand and get the promoted on Sunrise Radio. To find out more, apply and visit the Sunrise Creative Network page at www.sunrise.radio. That is www.sunrise.radio. That is all about, and that is all about TikTok. And if you are TikToker and this is the platform for you, Sunrise Creative Network. And ये वहाँ पे हो रहा है and you have to join that as well. And बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का भी. और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे.
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे. किचन विच सारा सामान मकिया पिया है. आटा, चावल, दालां, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है.
6: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ. उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे.
5: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने. नहीं,
6: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5. Telephone 01274464446.
7: Sunrise and Music. The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

Welcome back, listening. You're listening to Sunrise Radio on 103.2 FM and 100.6 FM. और जकला खैर के आपने भी हमारा साथ देने या हमारे आफिज कुरान हैं, नन्ने मुन्ने साथी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जकला खैर के आपने भी हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इंशाल्लाह जल आपसे भी हम कलाम होंगे और अगले आवर में, और नदीम मंसूर साहब आपसे भी हम कलाम होंगे नेक्स्ट आवर में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। और राना नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह खैर कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और फ्रॉम बर्मिंघम जो हमारे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाबे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमने ये जो छोटा सा कलाम पेश करना है, दिस विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़। और ये कलाम सब दोस्तों के लिए है।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: We're at the time in the studio is 13 minutes past 9 in UK. Good evening to you all. Or you have a short break, karenge.
2: नई मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
1: Right, welcome back here, listener. You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM. और यहाँ पे लाइव कॉल में हमारे जो चाहने वाले हैं वो आ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और इसमें प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का भी और जाकल्ला खैर आपका भी जो हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ दे रहे हैं अतीका साहिबा हैं ऑल द वे फ्राम मैनचेस्टर से हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
1: आपकी कैसी तबीयत ठीक ठाक से ठीक है आपके
4: अल्हम्दुलिल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
4: सब ठीक है आपकी दुआओं से सबकी दुआओं से
1: जी
4: तो सबसे पहले तो सबको मेरी सारी लिस्ट को
1: जी
4: सलाम
1: जी वालेकुम सलाम
4: और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम आपने लास्ट वीक किया था बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपने पेश किया इसकी अल्लाह पाक आपको जजा देगा आपने साबित कर दिया कि आप हर तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं और इतना खूबसूरत तरीके से किया आपने
1: बहुत शुक्रिया
4: कि मेरे पास अल्फाज नहीं है तो इंशाल्लाह ताला आज भी जितने भी लोग आते हैं देखिए रेडियो में प्रोग्राम होते हैं आपके प्रोग्राम में सब आते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं मुझे उम्मीद है कि आज भी सब इसी तरह इस प्रोग्राम को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे
1: जी,
4: तो ये एक बहुत ही दुख बड़ा दिन है ये इसमें सबको हिस्सा लेना भी चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि सारी उम्मत के दिल में कितना दर्द है तो इंशाल्लाह ताला सब आएंगे और अपना अपना हिस्सा भी डालेंगे
1: जी
4: तो दोबारा सबको सलाम करते हैं और इशारत पेश करते हैं सबके लिए
1: जी जी
4: क्योंकि काश में खाके करबला होती काश में खाके करबला होती खून की लमीस आशना होती सुर्खियां लेके खून शहदा की लाला जारों में मैं हिना होती
1: क्या कहने
4: खैमा सईदा के दर पे खड़ी सर बसर शामिले वफा होती बाजू अब्बास के कलम जो हुए बाजू अब्बास के कलम जो हुए काशिन के मैं दस्तोपा होती जैनब पाक के सफर में कहीं मैं भी हमरा काफिला होती जैनब पाक के सफर में कहीं मैं भी हमरा काफिला होती सरबरीदा जो तन थे करबल में काश इनके लिए रिदा होती आस्तां तक कदम जो आ जाते खाक के करबला से क्यों जुदा होती अज़तफील इमाम आला मकाम ये फजीलत मुझे अता होती काश कूफा उजड़ गया होता काश कूफा उजड़ गया होता हाय आबाद करबला होती काश कूफा उजड़ गया होता हाय आबाद करबला होती इनकी तकदीस की महक पाकर अतरे फिरदौस के सिवा होती काश पाए हुसैन पर दौलत जिंदगी फिदा होती, काश मैं खाके करबला होती। इस बात पर अजल से हमें एतबार है, मर्जी अली की मर्जी परवरदिगार है। उनकी चमक का कोई भी नेमो बदल नहीं, चेहरे वो जिन पे इश्के अली का निखार है। जन्नत का फैसला हो या मौतो हयात का, अब हशर तक हुसैन को ही इख्तियार है। ए खत्म में मुसलीन बाखुदा मेरे मेरा घर का घर फर्शे अजाए शाह का आईनेदार है। ए मादरे हुसैन मुझे भी बुलाइए, आने को करबला मेरा दिल बेकरार है।
1: वाह वाह
4: वाह। ए मादरे हुसैन मुझे भी बुलाइए, आने को करबला मेरा दिल बेकरार है।
1: वाह।
4: हम ही नहीं हैं महबे दुआए जहूर में, बिनते रसूल को भी बड़ा इंतजार है। बिनते रसूल को भी बड़ा इंतजार है, माने ना जो भी सदके जनाबे बतूल को, लानत है जलील पे और बेशुमार है। बिनते रसूल आपके बेटे हसैन पर, बिनते रसूल आपके बेटे हुसैन पर, जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ निसार है।
1: वाह वाह।
4: इस बात पर अजल से हमें एतबार है, मर्जी अली की और मर्जी परवरदिगार है। हमसे छूटे ना नक्शे पाए हुसैन, हमसे छूटे ना नक्शे पाए हुसैन, रहम कर रहम या खुदाए हुसैन। और क्या इसकी चाहिए कीमत, और इसकी क्या चाहिए कीमत, जिंदगी है मेरी बराए हुसैन। अपने पैरों पे जो खड़ा हूँ मैं, अपने पैरों पे जो खड़ा हूँ मैं, मुझ पे कितनी है ये अताए हुसैन। तुम हमारे हो सब अजादारो, गोशे दिल से सुनो निदाए हुसैन।
1: वाह वाह वाह।
4: जाकरो कितने खुश नसीब हो तुम, जिंदा रखे हो करबलाए हुसैन।
1: वाह।
4: जज्बाए शोक मातमे शबीर,
1: वाह।
4: जज्बाए शोक मातमे शबीर,
1: वाह।
4: जानो दिल सब हुए फिदाए हुसैन। हम डटे हैं डटे रहेंगे यूं ही, नहीं आसान अत्तबाए हुसैन। करबला मंजले मुराद रहे, कोई आवर नहीं बजाए हुसैन। लाशी अकबर उठा के लानी है, लाशी अकबर उठा के लानी है, वक्त मुश्किल है ये बराए हुसैन। अली असगर संभालिए पीका, थरथराते हैं दस्ते पाए हुसैन। दरे खैमा पे देखा जैनब ने, दरे खैमा पे देखा जैनब ने, खाली आया है जुलजनाने हुसैन। मौत को जो जड़ी सी आई है, कौन शाहिद सुने बकाए हुसैन। हमसे छूटे ना नक्शे पाए हुसैन, रहम कर रहम या खुदाए हुसैन। जनतों को ये खजीने करबला, हैं अजब तेरे नगीने करबला। जनतों के ये खजीने करबला, हैं अजब तेरे नगीने करबला। तैरता अमवाजे गम पर हिजर की, चल मेरे दिल के सफीने करबला। है दुआ पहले जियारत हो तेरी, है दुआ पहले जियारत हो तेरी, फिर चला जाऊं मदीने करबला। काफला पहुंचा है अपने खून से, काफला पहुंचा है अपने खून से, दीन के सब जख्म सीने करबला। ठोकरे गैरों की खाऊं किस लिए, ठोकरे गैरों की खाऊं किस लिए, जा रहा हूँ अश्क पीने करबला। मतसल फिरदौस जिससे की गई है कहीं तुझ में वो जीने करबला, साल भर में शहदाए अहमद में रहूं और मुहर्रम के महीने करबला, जनतों के ये खजीने करबला है अजब तेरे नगीने करबला, तरतीब बताते हुए शबीर के आंसू, पलकों पे इकट्ठे हुए शबीर के आंसू, तरतीब बताते हुए शबीर के आंसू।

0: जारी है जहां भर में अजा सीना बसीना, और आंखें बदलते हुए शब्बीर के आंसू, तरतीब बनाते बताते हैं शब्बीर के आंसू, पलकों पे इकट्ठे हुए शब्बीर के आंसू। बहुत शुक्रिया,
1: जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह तबारक अज़्ज़ देगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हाजिर किया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थी अतीका साहिबा ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर, इन्होंने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मौजूदा मेहमान हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि उन्होंने हमें साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारा साथ हैं चौधरी फरियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी साहब आप हवा के दोष में हैं, चौधरी साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान, हमारे मोहतरम, हमारे भाई, और पता नहीं क्या वजह है कि उनको आवाज़ नहीं आ रही है, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और हमारी आवाज़ उनके पास जा रही है, पता नहीं कि नहीं। और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, और एक दफ़ा मैं दोबारा देख लूँ, और यहाँ पर यह ना हो कि किसी का मैं उन्होंने फ़ोन किया, पाकिस्तान से फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ले के आऊँ। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर कलाम पेश करना है, और वो देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं।

0: और यहाँ भी मसला हल हो चुका है और हमारे चौधरी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर। मैं कहता हूँ कि ये जो महीना है और ये इस दौरान में ये ना हो कि मेरे से कोई गलती खताई हो जाए और वो हमारा साथ दे रहे हैं, चौधरी फरियाज साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं, हमारे मौजूद मेहमान हैं, हमारे मुर्शिद हैं वो भी आ गए हैं माशाल्लाह, शकील साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है वो दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ख्याल रखें कि जब आप फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ, आपको ये बात नहीं कि मैं होल्ड नहीं करता, मैं होल्ड करता हूँ तो वहाँ पे खामोशी होती है, तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइन जो डिस्कनेक्ट होगी, ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि वहाँ पे खामोशी होगी तो आपने मेरा साथ देना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो तीन कॉलर जो ड्रॉप हो गई हैं तो मैं उनसे भी माफ़ी चाह रहा हूँ, और आपने मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे तो मैं आपको दोबारा ले कर जाऊँगा हवा के दोष में थोड़ी देर के बाद। और फिलहाल यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Koi paronthe shuru the nahi milan lage. Kitchen vich sara saman makiya pi aaye. Aata, chawal, daalan, gosht, sabziyan, har cheez len jao te adda din lag jana hai.
4: Tusi fikr na karo ji. Hane e Asia Superstore janeya te sari shopping karke le aane aa. Unna ne navi branch vi kholi hai jithe har kisam da kitchen te kareelu saman badi munasib keemtan te mil jayega aur gosht vi utho hi lavange.
3: Wah ji, chalo fir aake paronthe vi banane nahi.
4: Asia Superstore, Southfield Road, Bradford 5. Telephone 01274464 46. Sunrise and music.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनिंग, यू आर लिसनिंग सनराइज रेडियो। और यहाँ पे और यस इट इज़, ये जो हमारा जो मुहर्रम

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: The time in the studio is 44 minutes past 9. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी. ब्रेक के फौरन बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अजान भी पेश करूँगा और आपने कहीं पे जाना नहीं है. Keep it locked with Sunrise Radio.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे. किचन विच सारा सामान मकिया पिया है. आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है.
5: तुसी फिकर ए ना करो जी. हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया. उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे.
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने. नहीं,
5: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
6: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ पे अजान शो होगी और अजान यहाँ पे शो नहीं हो रही है. ये मेरे ख्याल में कोई गलत टाइम है, वहाँ पे शो होगी और कोई मसला नहीं. यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे अजान पेश कर देता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई गलत टाइम ही है. और अभी मुझे कह रहे हैं कि 5 मिनट नहीं है, 1 मिनट में यहाँ पे अजान होगी. और कीप इट लॉक्ड विद रेडियो 103.2 FM. और बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों में, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाब हैं, अजीज़ हैं. और कोई बात नहीं, वो मेरा भाई भूल गया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पेश कर लेते हैं. और ये क्योंकि हम ना एक ये भी एक खबर का काम है और खूबसूरत हम यहाँ पे उनके लिए बैठे हुए और हमने यहाँ पे अजान पेश करनी है. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाब हैं, अजीज़ हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे अजान पेश करनी है.

0: Right, welcome back. You're listening to Sunrise Radio on 103.2 FM, 100.6 FM across the West Yorkshire. Or Bob, shukriya aapka bhi. And not forgetting on DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Ilkeston, Leeds, Halifax, Manchester, or East Lancashire, mein, Blackburn, mein, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Minton, Keene, mein, hamara program suna ja raha hai. Or not forgetting, very, very soon we will be launching on Derby. Or not forgetting, you can download Sunrise Radio app on Apple Play Store and Google Play Store, and not forgetting on www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. That is all about Sunrise Radio. Aur yahan bhi hamara saath de rahe hain hamare nanne munne se saathi hain, mashallah zakallah khair ke wo bhi hamara saath de rahe hain. Aur Muhammad Yahya hain hamara saath de rahe hain, mashallah alhamdulillah rabbil alamin, wo bhi hamara saath de rahe hain. Aur yahan pe unko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji hazur, kaise hain, theek hai aapki?
1: वालेकुम
0: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. और क्या हमारे लिए लेके आए आज? बिस्मिल्लाह करें. जी जी बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह, गो अहेड.
1: ये दिल की हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. लिबास है पटा हुआ, गुबार में अता हुआ. तमाम जिस्म नाज़नी शिदा हुआ कटा हुआ. ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है. ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है. के है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ. ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है. ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है. हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये. हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये. जबी तो इसके सामने पहुंच गए जबर्द है. बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. लिबास है पटा हुआ, गुबार में अता हुआ. तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ. ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है. ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है. के है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ. ये बिल की हुसैन है, नबी का नूर ऐन है. हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है.
0: MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Oh, what a beautiful voice you have, a young man. Or aapke bhi waliden, MashaAllah, program sun rahe hain. MashaAllah, he's driving back to Bradford. To wo aapko salaam pesh kar rahe hain. Ji.
1: I've got one more not and then I will...
0: Ji, no problem. Ji, go ahead. Ji, ji.

0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर यंग मन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें यंग मन, और वी ऑल विल लव यू माशाल्लाह। हमेशा हम आपका एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपके लिए, और आपके वालदैन के लिए भी हम दुआ गो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यंग मन मोहम्मद जैया बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और हमारे लिए भी दुआएँ करनी, ठीक है? Are you going to do any dua for us now?
1: No, I think I'll leave it here for now.
0: Okay, okay. Thank you. JazakAllah khair, because you always do dua for us. Baba shukriya. Thank you very much. JazakAllah khair. Okay, aapna khayal rakhiye young man. Okay. JazakAllah khair. That was a young man. MashaAllah, MashaAllah. Aur jitni inki main tareef karun kam hai. Aur baba shukriya inka bhi. Aur yahan bhi hamara saath de rahe hamare maujood mehmaan hain. Aur unka main shukrgozar hoon, mamnoon unka. Aur yahan bhi hamara saath de rahe hamare mohtaram, hamare उस्ताद हैं, और उस्तादों का भी हम कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैं छोटी सी ब्रेक करूँगा, ब्रेक के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं एम खान जी भी हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं फ्राइजिंग हॉल से, माशाल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और जो हमारे नात खान हैं, इंटरनेशनल नात खान हैं, पाकिस्तान से वो आए हुए हैं माशाल्लाह, वो भी कोशिश करेंगे शिरकत करने की। नदीम मंसूर साहब हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं, ममनून आपका कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करनी, थोड़ी देर के बाद एक मिनट के बाद यहाँ थोड़ी सी ब्रेक होगी, और ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का भी, बहुत बहुत शुक्रिया जाकल खैर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाबे अजीज है, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये बहुत ही इनायत है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका डॉक्टर मलिक साहब आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने तारीफ की है हमारे मोहतरम की, शकील साहब की आपने तारीफ़ की है माशाल्लाह, सबकी आपने तारीफ़ की है, आपको सबको सपोर्ट करते हैं और जला अफजाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे उससे पहले
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is for 12 minutes past 10 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are, keep it locked with the Sunrise Radio.
3: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
5: Looking for a quality home to rent?
6: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
5: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
0: राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान भी हैं, और हमारे अपने भी हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
7: मेहमान तो कभी कभी होता है ना, हम तो हर रोज तकरीबन हर हफ्ते आपके दर पर होते हैं।
0: नहीं, वो आज आप हमारे लिए, आप हमारे लिए ऐसे मेहमान हैं कि ऐसा प्रोग्राम भी है, और इस वजह से वो
7: ठीक है। तो आज बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जा रहा है अगर तमाम हुसैन की याद में।
0: जी जी।
7: तो इससे पहले कि मैं कुछ करूँ, तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त घरों, बाजारों, दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, खेतों, खलियानों, बल्कि इस पार और उस पार जहाँ कहीं भी ये नशरियात सुनी जा रही है, मैं सबको असलाम कहता हूँ।
0: वालेकुम अस्सलाम।
7: एक कथा है, सबसे पहले असलाम है कि इमाम क़िबलतैन, असलाम है के इमाम क़िबलतैन, असलाम है के राहत जान नूर ऐन, असलाम है मस्ती इरफान हक, असलाम है सैयद मौला हुसैन।
0: सुभान अल्लाह।
7: जी, छोटा सा नजराना की जो पेश करूँ बार इमाम हुसैन।
0: जी जी।
7: रहबर कारवां हुसैन, रहरो बेगुमा हुसैन, मगर आज कहां हुसैन, मरकज हर फगां हुसैन।
0: हाय हाय हाय हाय।
7: रहबर कारवां हुसैन, रहबर بیگم حسین مگر آج کہاں حسین مرکز حرف فغا حسین اے قتیل بے خطا اے شہید بارزا دشت بلا میں ہے بے نوا رقم داستان حسین اور اصغر و اکبر عباس کوئی نہیں ہے آج پاس اصغر و اکبر و عباس کوئی نہیں ہے آج پاس گویا وفا ہے حرف یاد بے کرام بے زبان حسین اور دین حق کو دین پناہ و حق مگر نگر مشکل کشا چارہ گھر دین پناہ و حق نگر مشکل کشا و چارہ گھر گھر بھی لٹا کٹا ہے سر حیرت ہے سوری تھوڑا سا اموشنل ہے
0: نہیں ایسے میں جی ایسے ہی کرتا ہوں میں بھی ایسے ہی مجھے الفاظ نکلے ہیں جب آپ ایسے گفتگو ہوتی ہے نا جو الفاظ آپ یوز کرنے جانے والے ہیں تو وہ کرنا بڑی مشکل ہے
7: بہت دین پناہ حق نگر مشکل کشا ہے چار گھر گھر بھی لٹا کٹا ہے سر حیرت دو جہاں حسین زلف نبی کا خم ہوئی زلف نبی کا خم توئی دشت علی کا دم توئی لوح بھی تو قلم توئی تیرا نشاں ہے یا حسین اور آخری شعر واسف بے نشاں بلا کیوں نہ کہے بھرملا کوئی تیرے سوا بھی تھا دین کا پاس با حسین
0: اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے یا حسین یا حسین یا
7: سر جی مجھے آپ نے برداشت کیا
0: نہیں
7: کچھ کلام ہی ایسا تھا اموشنل تھا
0: میں نے
7: بڑا ضبط کیا ہے بس دو میں یاد رکھنا سب کو السلام اوکے
0: السلام بہت بہت شکریہ سر جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ یہ نظرانہ نے پیش کیا ہے عبد القیوم صاحب ہیں اور بہت بہت شکریہ ان کے میں جتنے بھی میں ان کی تعریف کروں کم ہے اور جن کے پاس دل ہے جن کے پاس دل ہوتا ہے آنکھیں ہیں آئے ہائے ہائے ہائے جب ان کے بارے میں بات ہو تو وہ میں کیا کہوں گا یہاں پہ مجھے خود جو نا رونا آ رہا ہے بلیو کرنے کے مجھے خود رونا آ رہا ہے اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کنٹرول کرنے کی اور میں یہ ایسے ہی ہیں اور یہاں پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہمارے محترم ایم خان جی ہیں بڑا ہی علم ان کے پاس ہے ماشاءاللہ یہ میرے استاد ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ان کا بھی آپ آئے ہیں اللہ پاک میں شام کو خوش رکھے شاد آباد رکھے کیونکہ یہ ایک خاص پروگرام ہو رہا ہے اور ان کا ہم کہتے ہیں کہ ان کا بھی ہم انتظار ہے کہ وہ بھی کچھ سنائیں گے ہمیں اور اپنی جو علمی گفتگو کریں گے جی بسم اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
8: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ کا اور آپ کے جتنے لسنر خواتین و حضرات
0: جی
8: ہیں
0: جی
8: سب کو سلام و سلامتی محرم شریف کی برکت سے ایسی سلامتی عطا فرمایا کہ اگلے محرم تک اللہ ساری کائنات میں سلامتی اور خیر کی پیک سے نواز دے
0: آمین سم آمین حق آمین
8: تو علامہ اقبال نے اسی مہینے کی نسبت جی انسان کو بیدار کرنے کے لیے کچھ کلام کا ذکر کیا تو کیا
0: جی
8: پورا قانون ہے اس کا تھوڑا ذکر کیا
0: جی اچھا
8: علامہ ارشاد علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حکمت ملکوتی
0: آئے
8: یہ علم لاہوتی
0: آئے
8: حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
0: آئے آئے آئے آئے
8: کہ ذکر نہیں شبی پراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو میں پروین کا کھیلتی ہے شکار آگے علامہ اقبال کا کلام آگے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنی شان ہے
0: اپنی شان ہے واقعی
8: میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں
0: جی
8: ان کی زبان کلام ان کے جسم کپڑوں سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں آپ پاتے ہیں درد مندان دے سخن محمد درد مندان دے سخن محمد حالوں جس پلے پل بدے ہون آوے بور معلوم
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ کیا کہنے
8: एक इलम दे जोरू कर दे वो भी जाहिर दिसदा
0: हाय हाय हाय
8: जिस पर होवे अता इलाही सुखन ना छुपदा तिसदा
0: आहा
8: दानश मंद पहचान करें दे आमा सार ना पाई
0: वाह
8: लकड़ हारे लेन बाजारों जो सस्ती मिटे साई
0: वाह वाह वाह वाह वाह
8: पाई मैं भी बिचूं ऐबें भरिया मैं भी बिचूं ऐबें भरिया दसा हुनर जबानू अखी वाले ऐब छपाओ
0: वाह
8: करां सवाल ते सानू
0: वाह
8: पाई दी फरमाइश मन्नी जो आया सो क्या
0: वाह
8: सुकुन करण दे लाए किथे
0: वाह
8: मैं बे इलम अजे हा
0: वाह
8: आई लफ्ज बोलाया जिथे ओ मुखातब भाई सो जो भाई करे सी ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਡਿਆਈ
0: ਵਡਿਆਈ ਆਹੇ ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ
8: ਜਿਲੇ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ
0: ਜੀ
8: ਤੋ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ
0: ਜੀ
8: ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਾ ਚਾਰਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਤਾ ਹੈ
0: ਜੀ ਜੀ
8: ਤੋ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂ ਪਰ ਥਾ ਤੋ ਜੋ साहिब इलम दरिया में गिरा उसके एक हाथ में किताबें थी
0: जी
8: और एक हाथ में जुमे की तैयारी नए कपड़े लाने वाले कपड़े
0: जी
8: और हाथ दोनों बचाने की कोशिश की लेकिन जो किताब का इलम था लिखा हुआ था
0: जी
8: उसको बचा लिया लेकिन कपड़े जो जुमे के तब्दील करके नमे लाने तो सब भीग गए
0: अच्छा
8: जब बाहर निकला वो फाजल नौजवान अजीम शख्स तो वो जिस शख्स ने धक्का दिया उसने कुछ मजाक करना शुरू किया तो एक प्रोफेसर साहब से कहने लगे तुझे शर्म नहीं आती
0: जी
8: इस महीने की ये सर्दी
0: अच्छा।
8: और ये यानी दरिया की
0: जी।
8: तो इस दरिया से बाहर निकलकर एक लफ्ज ने तुझे बुरा कहा बस बल्कि हंसते हुए तू इसे गले मिला
0: अच्छा
8: तो फरमाया आज के बाद आने वालों को नसीहत करो कि बात बात पर सर न काट दो
0: जी
8: बल्कि एक दूसरे को माफी देने का इरादा कर लो यानी ऐसी अपने अंदर जुर्म पैदा करो तो तुम्हें कोई तकलीफ दे तकलीफ बजाय फूल भी ना फेंको ताकि शायद फूल फेंकने से उसका दिल कहीं हो जाए शुक्रिया
0: जजाकल्लाह खैर बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें ये थे हमारे मेहमान माशाल्लाह आयम खान जी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं इल्मी गुफ्तगू करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमें अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप हमारा साथ दे रहे हैं जजाकल्लाह खैर अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे शादाबाद रखे और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही फाजल दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और जितनी भी इनकी मैं तारीफ कम है और ये हैं हमारे माशाल्लाह और ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और नाथ खान भी हैं खाना खान भी हैं

0: जारी है। तो आज हमारे लिए कौन सी नेम लेके आए हैं और हम जो सुनने वाले वो इंतजार में हैं। जी
1: ये है मनकबत
0: माशाल्लाह क्यों ना जी बिस्मिल्लाह करें
1: कि वो जब यजीदियों को अपना तारुफ कराते हैं
0: जी जी
1: तो शायर ने कुछ इस तरह से बयान किया है
0: जी जी
1: नबी दी राहत अली दा चैन नबी दी राहत अली दा चैन ते फातिमा दा मैं जाया होया जहान मैनू हुसैन

पसंद दिल विच समाया होया नबी दी राहत अली दा चैना मैं आम नहीं आ जी हाथ आ

राइट, वेलकम बैक लिसनर रेडियो 103.2 एफएम। और यहाँ पे अभी तो एक मिनट के बाद यहाँ पे अजान पेश होने वाली है माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारा बहुत ही अच्छे भाई हैं, और हमें मलाल हो रहा है, दुख हो रहा है कि उनकी लाइन नहीं मिली है। वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, नाथ खान है, इंटरनेशनल नाद खान माशाल्लाह, और उस्मान। इंशाल्लाह किसी और रोज़ आपसे हम कलाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके, आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, जाकल्ला खैर। और अभी तो आपको पता है टाइम बहुत ही कम है इस आवर का और हमारे प्रोग्राम का भी। इंशाल्लाह किसी और रोज़ हम आपके साथ हम कलाम होंगे हवा के दोष में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर, आप ड्राइव कैफली करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमने अजान पेश करनी है, वो हमारे लिए और सब के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत ही ज़रूरी है।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: राइट बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और जो मुझे अभी फ़ोन करने के लिए प्लीज़ स्टॉप योर कॉल्स, अभी टाइम में ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम का। और यहाँ पे क्योंकि हमारा साथ दे रहे नदीम मंसूर साहब हैं, वो हमें कलाम सुनाएंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे, और जो बाकी हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार ममनून का कि आपने हमें याद किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी आए ऑन एयर ऑफ एयर, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा साथ दिया, और क्योंकि ये खास प्रोग्राम था और खास हसन प्रोग्राम हमने ये पेश किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने आपने हमें मौका दिया, हमें टाइम दिया, और सनराइज़ रेडियो का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि ये जो प्रोग्राम हुआ है और हम इसका जो हम जो आपने हमें टाइम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल द मंजमन सनराइज़ रेडियो। और क्योंकि ये महरम का खास प्रोग्राम था और हमने भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, और हमने हिस्सा डाला है क्योंकि हम पंच पाक के मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके दीवाने हैं, और क्या कहेंगे, और हमारा भी हिस्सा यहाँ पे हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवे यहाँ भी हमारा साथ देने हमारे मौजूद मेहमान, हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त है, और क्योंकि ये जो खास प्रोग्राम है, और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेहमान, और क्योंकि ये जो खास जो प्रोग्राम था आप दोस्तों के लिए, और दर्द भरा और एक ऐसा प्रोग्राम था कि मैं खुद भी कह कहते हैं कि मैंने अपने आप को बड़ा ही कंट्रोल किया, बिलीव करें मैं अपने आप को बड़ा ही कंट्रोल किया, जैसे हमारे अब्दुल कयूम साहब आए हुए थे माशाल्लाह, और ऐसी ही हमारी भी सोच ऐसी ही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कि मैंने अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो जैसे जो उन्होंने जो अल्फाज इन्होंने यूज़ कर रहे थे माशाल्लाह, जो उनके बयानी कह रहे थे, ये हकीकत की बात है, हकीकत हुई है, और हम शुक्रगुजार हैं सबका, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु नदीम मंसूर साहब
1: जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु
0: जी। बिस्मिल्लाह करें हुजूर, ये ना हो कि हम बातें करते रहें तो प्रोग्राम खत्म हो जाए जी।
1: जरूर जरूर
0: जी।
1: शहरे तेरे